0: पाबंदियों और वहां पैदा होने वाले माल पर इजाफी तजारती पाबंदियों की भी हिमायत करते हैं। जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में मस्कूरा ममालिक के वज़राए खारजा ने बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो गैर कानूनी बस्तियों को बरकरार रखने वाली इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। ममालिक ने दो रियासती हल के साथ वाबस्तगी का इदा किया और कहा है कि 4 जून 1967 की सरहदों में और मशरक अलकुद्स के दारकूमत वाली एक आज़ाद फलस्तनी रियासत का तस्वर पायदार अमन के क्याम का वाद काम काबले अमल रास्ता है।
1: ईरान अपने हरमुज के करीब ममनुआ जोन बनाने का मंसूबा बना रहा है। ईरान के एक आला सतही सिक्योरिटी अहदेदार मोहसिन रजाई ने इतवार को ईरानी सरकारी टेलीविजन से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान आइंदा चंद रोज में अपने हरमुज के करीब एक ममनुआ जोन कायम कर देगा। रजाई ने कहा कि यह इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी लाइन से शुरू होगा और खलीज फारस के बाज़ इलाकों का अहाता करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस नए इलाके में दाखिल होने वाले हर बहरी जहाज को ईरान की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा।
0: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीका की कामयाबी का दावा करते हुए यह तजवीज़ पेश की है कि आबनाए हुर्मुज़ का नाम बदलकर आबनाए ट्रंप रख दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अगर वाशिंगटन फतेह हासिल कर लेता है तो तेल की कीमतों में तेजी से कमी आएगी। अमरीका के सदर ने आने वाले इंतखाबात के हवाले से नजरियाती अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपने हामियों को खबरदार किया है कि अगर इनके सियासी हरीफ जीत गए तो मुल्क को कम्युनिज्म के आगे घुटने टेकने का खतरा लाहक हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने वादा किया है कि अगर नवम्बर में रिपब्लिकन्स ने अमरीकी कांग्रेस का कंट्रोल बरकरार रखा तो हर बालग अमरीकी को $5,000 की अदायगी की जाएगी। इस रकम को ट्रंप डेविड नट का नाम देते हुए अमरीकी सदर ने अपने हामियों पर जोर दिया है कि वो इस तरह के वोट दें जिसे वो खुद जाती तौर पर उम्मीदवार हों।
1: अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेशगोई की है कि इंतखाबात के बाद ईरान के साथ जंग खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि 3 नवंबर को मुतवक्का वस्ती मुद्दती इंतखाबात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि तेहरान अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरानी हुकूमत को लाचार हुकूमत करार देते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान इंतखाबी नतज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वाशिंगटन ने कोई नई जौहरी बातचीत शुरू नहीं की, लेकिन उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, जिससे यह जाहिर होता है कि मुजाकरात अब भी हो सकते हैं। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अमरीकी हमलों ने 9 ईरानी ऑयल टैंकरों को नाकारा बना दिया है।
0: रूस ने कहा है कि हम आइंदा यूक्रेन अमन मुजाकरात के बारे में पुरउम्मीद हैं। यूक्रेन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोफ ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि यूक्रेन के तनाज़े से मुतलिक अमन मुज़ाकरात जल्द ही दोबारा शुरू हो जाएंगे। पेस्कोफ ने कहा है कि मुज़ाकरात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तस्दीकशुदा सियासी ख्वाहिश मौजूद है। ये बयान अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानब से दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल मुआहदे की खातर रोड मैप की ज़रूरत का ख्याल जाहिर किए जाने के बाद जारी किया गया है। बयान में पेस्कोफ ने वाज़ेह किया है कि मास्को इस हल की तफसीलात को अवामी तौर पर जाहिर नहीं करेगा और यह कि रूस वाशिंगटन के साथ पसे पर्दा राबता बरकरार रखे हुए है। अमरीका और रूस के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक मुलाकात के बाद जारी किए गए इस बयान में पेस्कोफ ने उम्मीद जाहिर की है कि अमन मुज़ाकरात मुस्तकबिल करीब में दोबारा शुरू हो जाएंगे।
1: अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ ने 8 और 9 सितंबर के दरमियानी शब उर्दन में अमरीका के मौफक सालती एयरबेस पर ईरान के हमले की तफसीलात शेयर की हैं। ज़राए ने दावा किया है कि इस हमले में अमरीका के तकरीबन 8 F-15 जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचा, तहम उन्होंने वाजह किया कि यह नुकसान मामूली नौयत का था और तैयारों को दोबारा परवाज़ के लिए तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा ज़राए ने बताया कि वार्थॉक के नाम से मारूफ एक A-10 थंडरबोल्ट हमलावर तैयारे का पर भी टूट गया, तहम उन्होंने बताया कि इस वाक़े में कोई भी अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब अमरीका ने मंगल के रोज़ ईरान की जानब से एक अमरीकी बहरी तनसीब को निशाना बनाने के जवाब में ईरान के 5 टैंकरों को तबाह करने का ऐलान किया था। ईरान की पासदारा ने इनकलाब ने बाद में रिपोर्ट दी कि उन्होंने 8 टैंकरों 2 जंगी जहाज़ों और उर्दन में अमरीकी बेस पर हमले किए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उर्दन में मौजूद अमरीकी अफवाज ने ईरानी हमलों के खिलाफ दिफा के लिए 30 से ज़ायद पैट्रियाट मिज़ाइल दागे। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमरीकी हुकाम ने पैट्रियट मिज़ाइलों के तेज़ी से कम होते हुए ज़खायर और दीगर हसास गाइडेड गोला बारूद के स्टॉक में कमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया था।
0: इंडोनेशिया के सूबे बांतिन के सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के सरबराह अल अमरत ने अपने एक बयान में कहा है कि एक तेज़ रफ्तार कश्ती जिसमें 5 फोटो सहाफ़ी अमले के 2 अरकान और 1 गाइड सवार थे उनसे राबता मुनक़ते हो गया है। अल अमरत ने बताया है कि सहाफ़ियों में से एक ने अपने करीबी रिश्तेदारों को भेजे गए एक पैगाम में कहा था कि वो अनाक कराकाताओ के आसपास के पानियों में पहुँच चुके हैं और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इस टीम की तरफ से मौसूल होने

0: अला आखिरी पैगाम था। अलमरद ने कहा है कि इलाके में मौजूद सर्च एंड रेस्क्यू टीमें अभी तक इस ग्रुप से राबता कायम करने और इनके मुकाम का पता लगाने में नाकाम रही हैं। जिन लोगों से राबता नहीं हो पा रहा इनमें अनातोलिया एजेंसी के एक फ्रीलांस कैमरामैन के तौर पर काम करने वाले फिरदौस वाजदी समेत इंडोनेशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी अंतारा मीर्दिका और आई न्यूज एजेंसियों के मुलाजमीन शामिल हैं। इंडोनेशिया के आतिशफशां अनाक क्राकाताओ में 6 सितंबर को धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में निकलने वाली राख जावा के इलाके में 6000 मीटर और सुमात्रा के इलाके में 15000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गई थी। धमाके के बाद आतिशफशां की राख मुल्क के मगरबी हिस्सों में फैलने की वजह से दारुल हुकूमत जकार्ता के सोईकार्नो हाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मंसूख कर दी गई थीं। धमाके के बाद मुल्क भर में 2300 से ज्यादा मुकामी और बैन अल-अक़वामी परवाजें मंसूख की गईं, जबकि 7 एयरपोर्टों पर लगभग 3,40,000 मुसाफिर फंस कर रह गए हैं।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
2: बैन अल-अक़वामी इदारा बराए उमूर महाजरत IOM ने कहा है कि बढ़ते हुए तशद्दुद ने एक ही हफ्ते में 4,500 सूडानी बाशिंदों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। IOM ने सलामती की बिगड़ती हुई सूरतहाल से खबरदार करते हुए कहा है कि सूडान के शुमाली सूबों दारफोर और ब्लू नाइल में 4,500 से ज्यादा अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। शुमाली दारफोर में 3 और 6 सितंबर के दरमियान तकरीबन 1,275 लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं और कुछ ने हमसाया मुल्क चाड में पनाह ले ली है। ब्लू नाइल में एक ही दिन में मुख्तलिफ देहातों से तकरीबन 3,315 अफराद बेघर हो गए हैं। इदारे ने सूरतहाल को कशीदा और इंतहाई गैर मुस्तहकम करार दिया है। वाज़ह रहे कि सूडान में अप्रैल 2023 में खाना जंगी शुरू होने के बाद से अब तक हजारों अफराद हलाक और 13 मिलियन बेघर हो चुके हैं।
0: फिलिपाइन के कोस्ट गार्ड के दिए गए बयान के मुताबिक बुध की रात मगरबी फिलिपाइन में जजीरा पालावान के करीब एक मुसाफिर परदार बहरी जहाज में आग लगने के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 80 से ज्यादा लापता हैं। कोस्ट गार्ड ने बताया है कि पालावान के इलाके कोरोन के करीब MV जोनेस्टर नामी जहाज में आग लगने के बाद 43 अफराद को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड की जानब से जारी करदा तस्वीर और वीडियो मनाजर में देखा जा सकता है कि शोलों ने जहाज के कुछ हिस्सों को लपेट में ले रखा है और इमदादी टीमें लाशों को बॉडी बैग्स में मुंतकिल कर रही हैं। कोस्ट गार्ड के तर्जुमान कोमोडोर नोमी कियाबियाब ने DZXL रेडियो को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि जहाज के रिकॉर्ड के मुताबिक इस पर 117 मुसाफिर और अमले के 17 अरकान सवार थे। कियाबियाब ने बताया है कि 80 से ज्यादा अफराद लापता हैं, जबकि उन्होंने वाजे किया है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहने के बायस इस तादाद में तब्दीली आ सकती है। एहलकार ने कहा है कि ये फेरी मनेला के इलाके बासीको से रवाना हुई थी और कोरोन की तरफ आजमे सफर थी। आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है।
2: तुर्क सदर के शोबा सरमायाकारी और माली उमूर की मेज़बानी और वजारत सनअत और टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजिक शराकतदारी के साथ मुनक़िद होने वाला आलमी टेक्नोलॉजी नुमाइश GTEX पहली बार इस्तांबुल में शुरू हो गई है। इस तकरीब के दायरेकार में 70 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात, सरमायाकार और टेक्नोलॉजी के शोबे के रहनुमा एक जगह जमा हुए हैं। तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदारती इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ऑफिस के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा गोखान युजल ने इस बात पर जोर दिया कि मसनूई जहानत की तब्दीली के सफर में तुर्की एक मजबूत पोजीशन का हामिल है। उन्होंने कहा कि तुर्की महज एक पुल नहीं है बल्कि दुनिया को आपस में जोड़ने वाला एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता इत्तिसाल भी है। गोखान युजे ने मजीद कहा कि अपनी मजबूत सनअती सलाहियतों, अहल व हुनरमंद नौजवान आबादी और 1000 से ज्यादा मसनूई जहानत की कंपनियों के साथ तुर्की अपने टेक्नोलॉजी के अहदाफ को आलमी इक्तिसादी कदर में तब्दील करने के लिए मुकम्मल आजम रखता है।
0: रवां साल का माह अगस्त दुनिया भर में रिकॉर्ड में आने वाले अब तक के रिकॉर्ड का गर्म तरीन महीना रहा है। यूरोपीय यूनियन के महकमा मौसमियात कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने जुमेरात को जारी करदा बयान में अगस्त के महीने को दुनिया भर में अब तक का गर्म तरीन महीना करार दिया है। इस महीने में मगरबी यूरोप ने अपनी तारीख का गर्म तरीन मौसम में गर्मा देखा और बहरी दर्जा हरारत भी बेमिसाल सतह तक पहुंच गया। महकमे के जारी करदा जायजे के जवाब में अक़वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि जब तक इंसानियत फोसिल ईंधन को तर्क नहीं करती, कुर्रा अर्ज़ी ऐसे हालात की जानब बढ़ता रहेगा जो इससे पहले कभी देखने میں نہیں آئے. اگرچہ کوپرنیکس کے مشاہدات 1940 تک جاتے ہیں, لیکن برف کے مرکزے, درختوں کے حلقے اور مرجانی ڈھانچے ایسے شواہد ہیں جو سائنسدانوں کو موجودہ

0: बबल प्लास्टिक की लपेट में बुनियादी तौर पर प्लास्टिक फिल्म की दो तहों पर मुश्तमिल होता है, जो एक साथ चिपक कर बुलबुले या हवा से भरी जेबें सी बनाते हैं। ये बुलबुले मवाद को उसकी खसूसियत का असर देते हैं और असरात के खिलाफ बेहतरीन तहफ़ फराहम करते हैं। बुलबुले आम तौर पर दायरे में या लंबे होते हैं और मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक अपने हजम से मुख्तलिफ हो जाते हैं। बबल प्लास्टिक रैप के इस्तेमाल का इलाका, जो कि पैदावारी अमल के बाद उभरता है, जिसमें खाम माल की तैयारी, बुलबुले की तश्कील, कटिंग और रैपिंग जैसे मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, रोज़ बरोज़ मतनौ हो रहा है। सबसे दिलचस्प मिसालों में से एक यह है कि नॉर्वे और स्वीडन जैसे सख्त सर्दी वाले ममालिक में तिब्बी टीमें मरीजों की नाजुक नकल व हमल के दौरान हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए बबल प्लास्टिक की लपेट का इस्तेमाल करती हैं। सामिन, हमारी जिंदगियों को सहल बनाने वाली इस इत्तफाकी इजाद ने अपना कल्चर भी बनाया है। जबकि 1992 में कैथरीन डैलन नामी माहिर नफ्सियात ने साइंसी तौर पर इस बात का तयन किया था कि बबल प्लास्टिक की लपेटों को फाड़ने के जरिए मरीजों को ज़्यादा पुरअमन और जोश दिलाया जा सकता है। 2015 में अमरीकी रियाद कोलोराडो में 2681 अफराद एक ही वक्त में इन बुलबुलों को तोड़कर गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।